अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

हे सुनो वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

ताली ताक जमी ताक ताली ताक जमी ताक झाला आंबो ताक जगी ताक ताजे गेले तू ताक नाक ताक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जमी ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेटे ताक तारी ता जग तारी ता जन जाने को दारी दाबू तारी गेटे जम तारी

ताले ताग जुमी ताग ताले ताग जुमी ताग झाला आंबो ताग जुगी ताग ताले गे नेतो ताग नाक ताग जुमी ताग नाक नाक जुमी ताग नाक नाक जुमी ताग नाक नाक जम तारिता जग तारिता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेटे ताले तारिता जग तारिता जन जाने को कुदारी दाबु तारी गेटे जम तारी

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

सभी सुनने वालों को उजाला रेडियो का प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका हमसफर निशा। आप सभी सुनने वालों को अदाब अर्श और नमस्कार। मुझे यकीन है कि कितने सुनने वाले इस प्रोग्राम को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करते हैं। आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाए, मजे लीजिए। प्रोग्राम आगाज करती हूँ आशा भोसले की गाई हुई ये भजन से।

अमीरों की परमेश्वर रूहानी अंदाज में पेश थी ये भक्ति गीत। संगीत देने वाले थे श्री रामचंद्र और महान कवि प्रदीप का गीत रचना था। ऐसे ही रूहानी अंदाज में नाज शरीफ पेश है महेंद्र कौर की आवाज में

नूरे नबी से रोशन है सीना, अनवर फरूख आबादी का कलाम और मामी बच्चों की मौसिकी में नाज शरीफ पेश था। आपकी याद आती है तो कभी आंखें भीग जाती है, तो कभी यादों में रातें बीत जाती है। कोशिश तो बहुत की पर यादें तो यादें हैं, कभी हम हार जाते हैं तो कभी यादें जीत जाते हैं।

छाया गंगुली से पेश थी ये गजल शायर मखदूम मोहियुद्दीन का कलाम और मौसिकार जयदेव की मौसिकी थी। कभी आह लब पे मचल गई, कभी अश्क आंख से ढल गए, उस्ताद गुलाम अली से पेश है ये गजल।

राशिद कामिल का कलाम और उस्ताद गुलाम अली की आवाज में पेश थी ये गजल। जरूरी तो नहीं जुबान से कहे दिल की बात, जुबान एक और भी होती है इजहार मोहब्बत की। दिल की बात कहीं नहीं जाती, चुप के रहना ठाना है।

दिल की बात कहीं नहीं जाती, बेगम अख्तर की आवाज में पेश थी ये गजल और महान शायर मीर ताकी मीर का कलाम था। फिर किसी से बातें वो मुलाकातें अब नहीं होंगी, रातें तो होंगी, रातें तो होंगी, पर वो रातें अब नहीं होंगी। आज सोचा तो आंसू भर आए, मुड़ते हो गई मुस्कुराए।

बात सोचा तो आंसू भर आए, गजल शौकीन के लिए कुछ गजलें सुनवाए। प्रोग्राम का रुख जरा सा बदल देते हैं। अब हम आपको हल्के हल्के मीठे धुनों में नगमे सुनवाएंगे, जिसे बचपन से संगीत सुनने की शौक है, तो कहीं दिल के कोने में दबी हुई नगमे उभर आएंगे, जैसे कि ये दो गाना। ये किसकी आवाज है शायद आप पहचान जाएंगे।

मेरी प्यारी पतंग चली बादल के संग। जी हाँ, याद आई ना ये किसकी आवाज थी। फिर भी बतला देते हैं, गाने वाले थे शमशाद बेगम और उमा देवी। उमा देवी जो फिल्मों में मजाकिया रोल अदा करती थी और टुनटुन का नाम से मशहूर थी। अगला जुगल गीत आइए सुने, इस बार शमशाद बेगम की साथ सुर से सुर मिला रहे हैं मोहम्मद रफी साहब।

पर क्या थी गम खाना पड़ेगा। मौसिकार नौशाद अली की मौसिकी और शकील बदायूनी का कलाम था। गीता दत्त शोही आवाज में क्या सुनाएंगी, आइए सुनें।

नगमा पेश था और ये नगमा फिल्म कमांडर में से लिया है। परवाह कर उसकी जो तेरी परवाह करे, जिंदगी में जो कभी ना तन्हा करे, जान बन के उतर जा उसके दिल में, जो जान से भी ज्यादा तुझसे वफा करे।

फिल्म टॉवर हाउस का नगमा पेश था और ये डुएट अजीत और शाकिला पर फिल्माया गया था। सदियों से इस दुनिया में चल रही है मोहब्बत की दास्तान। दुनिया की दो अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग न जाने कैसे मिल जाते हैं एक दूसरे से, दिलों की दौड़ जोड़ती है और बन जाती है मोहब्बत की एक नई दास्तान। ये सिलसिला है प्यार का, जिसका हिस्सा है हम और तुम।

0: मोहब्बत भरी शायराना अंदाज में पेश था ये नगमा, मौसिका रोशन की मौसिकी, साहिर लुधियानवी का कलाम और मोहम्मद रफ़ी साहिब की आवाज़ इस गीत में चार चांद लगाए है। इश्क मोहब्बत अल्फाज में लाई नहीं जाती, ये तो वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। इश्क मोहब्बत क्या है सुनाएंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस सी एच आत्मा।
1: हर दर्द की तैयारी

एक पल जो मिला है तुमको जीने के लिए, खूबसूरत अंदाज में पेश था ये सूफियाना कलाम CH आत्मा की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर से अगला गीत। आप प्रोग्राम को सुनते जाना, अभी थोड़ी देर में फिल्मी दुनिया पेश किया जाएगा।

सुनने वालों को प्रोग्राम फिल्मी दुनिया में एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपको फिल्म ससुराल में से ये लोकप्रिय गीत सुनवाते हैं, फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे।

अभी आपने फिल्म ससुराल में से ये गीत सुना और ये गीत महान अदाकार राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया था, जिसके बारे में हमने कई हफ्तों से बयान कर रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में बतलाई थी कि राजेंद्र जी अपने बीवी बच्चों के साथ यूरोप गए थे छुट्टी मनाने के लिए। राजेंद्र ने आने जाने का फ्लाइट पुख्ता, मतलब बफेस्ता कर चुका था और वापसी का फ्लाइट 24 अगस्त का था। ये भी बतलाई थी कि राजेंद्र ने अचानक फैसला किया 23 अगस्त को वापस जाने को। शुक्ला बीबी ने जब सवाल किया क्यों हमें 23 अगस्त को बॉम्बे पहुंचना है, तो राजेंद्र ने कहा बाद में हम बतलाएंगे। शुक्ला बीबी बेचैन थी, घबराहट महसूस कर रही थी, तो याद आई कि 23 अगस्त अदाकारा शायरा बानू का सालगिरह का दिन है। अदाकारा शायरा बानू रितेंद्र जी से कहा था कि आप जिस जगह पर होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरे सालगिरह का दिन तुम्हें मेरे साथ सालगिरह का जश्न मनाना है। अदाकारा शायरा बानू ने फिल्मी दुनिया का सभी जाने माने कलाकारों को दावत दिया था सालगिरह का दिन साथ मनाने को। हर एक मेहमान अंदर जाने से पहले इस्तेमाल किया गया गुलाब की पानी से, रोज वाटर से, और फिर सामने खड़े थे राजेंद्र कुमार अपने बीवी शुक्ला के साथ। सभी के नज़र इन दोनों मियां बीवी राजेंद्र जी पर था। शायरा बानू ने अपने सब मेहमान को छोड़कर राजेंद्र और शुक्ला बीबी को मेहमान नवाजी किया और फिर शुक्ला बीबी से सवाल किया कैसे थी यूरोप का सफ़र, तो शुक्ला बीबी ने कहा बहुत शानदार सफ़र था, इसलिए क्योंकि मेरी मियाँ और बच्चे साथ था। शायरा बानू ने शुक्ला बीबी से सवाल पर सवाल करती गई और शुक्ला बीबी अपने मियाँ राजेंद्र जी का हाथ में हाथ डालते, चेहरे पर हल्का सा मुस्कान के साथ जवाब देती गई और ये भी कहा कि उसे और मियाँ को स्विट्जरलैंड सबसे ज़्यादा पसंद था। सामने खड़े थे शायरा बानू की माँ नसीम बानू, एक दौर की मकबूल अदाकारा, और शायरा बानू की नानी माँ। दोनों सुन रहे थे शायरा बानू और शुक्ला बीवी की बातचीत। दोनों को एहसास थी और घबराए हुए, क्योंकि अफवाहें थे कि राजेंद्र कुमार और शायरा बानू में अदाकारी के बढ़कर और रिश्ता था, यहाँ तक कि दोनों ने शादी करने का इरादा कर लिया था। राजेंद्र ने कहा जी हाँ, एक पल के लिए हो गया था मैं कमज़ोर, शायरा बानू थी दिल और दिमाग से हसीन। बातें आगे बढ़ाने से पहले सुनवाते हैं ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये गीत फिल्म झुक गया आसमान में से लिया है।

इस गीत से पहले आपने सुना कि शायरा बानो की माँ नसीम बानो और शायरा जी की नानी माँ को मालूम था कि बेटी शायरा राजेंद्र से शादी करना चाहती थी और ये भी जानते थे कि बेटी शायरा बचपन से ही अदाकार दिलीप कुमार को पसंद करती थी, पर माँ और नानी ने सोचा था ये नामुमकिन है, दोनों का उम्र में 22 साल का फर्क है। पर बात अब कुछ और थी, इसलिए नसीम बानो और नानी माँ फैसला किए अदाकार दिलीप कुमार को इस जश्न में शामिल होने को। दोनों ने दिलीप कुमार को दावत दिया बेटी शायरा की सागरा की जश्न में हाजिर होने को, लेकिन दिलीप साहब को पहले से बतला दिए थे कि अफवाहें हैं चारों तरफ कि राजेंद्र कुमार और शायरा बानो शादी करना चाहते हैं। माँ और नानी माँ दिलीप साहब से कहा कि शायरा आपको बचपन से ही पसंद करती थी, पर उसे संजीदगी से नहीं लिया था। पर हालात अब और कुछ और थी। राजेंद्र शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप और धर्म मजहब की दीवार जो था। लोग क्या कहेंगे, मेहमान जश्न मना रहे थे और दूसरी तरफ राजेंद्र की बीवी शुक्ला के साथ हाथ में हाथ डाले सभी से घुल मिल कर बातें कर रहे थे। शुक्ला बीबी को एहसास थी कि किस दौर से मियाँ गुजर रहा है और सोचा वो अपनी मियाँ को इस मुश्किल की घड़ी में साथ देंगे। अगले ही दिन सुबह की अखबार में मोटी मोटी अक्षरों में लिखा था, द माइटी एक्टर दिलीप कुमार की मंगनी हुई है अदाकारा शायरा बानो के साथ। इस खबर से राजेंद्र भी खुश था, अपने बीवी से कहा कि खुदा उनकी दुआ कबूल किया और कहा कि वो अक्सर नसीम बानो से कहता था, देखना एक दिन आपकी बेटी की शादी एक बेहतरीन मकबूल शख्स से होगा। इसी दौरान राजेंद्र कुमार और शायरा बानो की फिल्म झुक गया आसमान को पूरा करना था और ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग दार्जिलिंग में था, तो बीबी शुक्ला ने फैसला किया था अक्सर अपने मियाँ के साथ जाने को। और शायरा बानो के साथ थे उनकी माँ नसीम बानो और मंगेतर अदाकार दिलीप कुमार। अवाम का कहना था कि फिल्म झुक गया आसमान में मंगनीस के बाद का किरदार में वो जज्बा नहीं था जो मंगनी से पहले था। इस फिल्म के बाद राजेंद्र कुमार और शायरा बानो एक साथ कभी नहीं काम किए। फिल्म झुक गया आसमान नेखते सेफना शास्त्र में रिलीज हुआ था, पर अवाम फर्क महसूस किया। पहले आइए सुने ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

फिल्म गीत में से ये गीत पेश था। इस फिल्म में राजेंद्र के साथ ही अदाकारा माला सिन्हा। फिल्म झुक गया आसमान के बाद आई फिल्म पालकी, जिसमें राजेंद्र जी के साथ ही अदाकारा वहीदा रहमान। राजेंद्र का किरदार एक शायर का था और उसे प्यार हो जाता है मेहरून निशा से, जो वहीदा रहमान का किरदार था। फिल्म पालकी के सभी गाने कमाल का था और मौसिका नौशाद अली की मौसिकी भी इसमें चार चांद लगाया। दो महान कलाकारों को होते हुए भी अवाम इस फिल्म को नापसंद किया। कहानी आगे बढ़ाने से पहले आइए सुने मोहम्मद रफी साहब से आवाज़ में ये नगमा।

फिल्म पाकी की कहानी मकबूल अदाकारा वहीदा रहमान के साथ थी और दिल छू लेने वाले नगमे थी इस फिल्म में, फिर भी अवाम इसे नापसंद किया। राजेंद्र ने सोच रहा था कि वो अब लगभग 40 साल का हो गया था, अपनी सेहत की ख्याल रखता था, पर कब तक? वह अभी भी कई फिल्मों में काम कर रहा था, जैसे तलाश अदाकारा शर्मिला टैगोर के साथ और अदाकारा वहीदा रहमान की फिल्म शतरंज में। अवाम की जुबान पर अब था कलाकारों धर्मेंद्र, संजय खान, मनोज कुमार, शशि कपूर, शमी कपूर और फिरोज खान जैसे एक्टर्स। राजेंद्र ने सोच रहा था वो इस मुकाम पर है, अदाकारी के साथ साथ कुछ और करना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो उस दौर के फनकारों को देखा जो अपने ज़माने में मकबूल थे, शोहरत की बुलंदियों पर थे, जैसे अदाकार चंद्रमोहन, मोतीलाल, भारत भूषण। और उम्र जब ढलने लगे तो फिल्में भी कम मिलने लगे और राजेंद्र ने सोच रहा था उसे अब खुद की फिल्म प्रोड्यूस करना है नए अदाकारों के साथ। पहले वो एक कंपनी बनाएंगी, नाम होगा रोज मूवी, और इस कंपनी में पार्टनर रहेंगे उनका भतीजा और बेटा बंटी। इसी तरह राजेंद्र ने पहली फिल्म प्रोड्यूस किया, फिल्म थी द ट्रेन, जिसमें काम किए थे राजेश खन्ना और अदाकारा नंदा। इस फिल्म की कहानी से नंदा खुश थी। नंदा ने कहा वो फिल्म छोटी बहन की किरदार के बाद सिर्फ इसी तरह के किरदार में मिलती गई जिसमें रोना ढोना था, इसलिए इसके वजह से कई प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया था। वो कमर्शियल फिल्मों में काम करना चाहती थी। फिल्म द ट्रेन उनके लिए नई तजुर्बा थी और वो भी अदाकार राजेश खन्ना के साथ। कहानी दिलचस्प है, एक गीत के बाद बातें आगे बढ़ाएंगे।

जी हाँ, ये फिल्म द ट्रेन का गीत है जो राजेश खन्ना पर फिल्माया गया था। फिल्म द ट्रेन से पहले राजेश खन्ना ने 2-4 फिल्मों में काम कर चुके थे। उनकी फिल्में आखिरी खत, रास, औरत, मेहनत करने के बावजूद फ्लॉप हुए, पर राजेंद्र ने राजेश खन्ना का किरदार परख लिया था, इसलिए वो पूरा एतमाद के साथ राजेश खन्ना को मौका दिया फिल्म द ट्रेन में नंदा के साथ काम करने को। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना पीछे मुड़कर देखा नहीं, आगे बढ़ते गए और राजेंद्र कुमार का पहला रोज मूवी प्रोडक्शन कामयाब हुआ। राजेंद्र जी फिल्म धरती में वहीदा रहमान के साथ काम कर रहा था, जिसमें डायरेक्टिंग कर रहा था डायरेक्टर श्रीधर। एक रोज श्रीधर ने राजेंद्र से कहा, सर आप 40 साल का लगता नहीं, ये क्या राज है, आप पहले से और जवान लगता है। थैंक यू सर, पर मुझे लगता है जैसे मैंने अभी एक्टिंग शुरू किया है। राजेंद्र ने अपने आप को गौर से आईना में देख रहा था, पर अपने आप से कहा कि हकीकत तो ये है कि वो अब 40 साल का हो गया था। राजेंद्र ने कहा, इस उम्र में कलाकारों जिसके पास पैसा होते हैं तो हॉर्स रेस में लगाते हैं या ताश खेलते हैं और आगे पीछे चमचा घूमते रहते हैं, पर वो अपने शानदार बंगला में खर्च करता है और मोटर कार जिसका नाम लोग नहीं सुना होगा पहले, और कई बार अपने बीवी बच्चों के साथ दुनिया घूमा, कहने दो जो लोग कहते हैं, पार्टीज में शामिल होना उसे पसंद नहीं था, पैसा फजूल खर्च करना उनकी फितरत में नहीं था। और अभी 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था, फिल्म धरती वहीदा रहमान के साथ, फिल्म गंवार वैजंती माला के साथ, और ये फिल्म राजेंद्र कुमार का भाई नरेश कुमार का पेशकश था। फिल्म गीत मल्हा सिन्हा के साथ, और चौथा फिल्म थी महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर और चौथा फिल्म थी महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर। कहानी आज मैं यहीं पर रोक देती हूँ। फिल्म गीत में से ये गीत सुनवाती हूँ, जिसमें महान बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बजाई हुई बांसुरी है।

अभी आपने फिल्मी दुनिया सुना, जिसमें हमने महान अदाकार राजेंद्र कुमार के बारे में बातें की। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना।

फिल्म जूली में से ये गीत लिया है। आनंद बख्शी का लिखा तर्ज था, संगीत देने वाले थे राजेश रोशन। अब आइए सुने गीता दत्त और हेमंत कुमार की आवाज़ों में ये जुगल गीत।

शायराना अंदाज में आपने अभी ये दो गाना सुना। उम्मीद है कि आप इन नगमों से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने मन्ना दे से अगला गीत।

0: करते बिना ठिकाना, मेरे राही चलते जाना।
1: लहरों में छुपा किनारा मन्ना डे से आपने अभी ये गीत सुना। अब आई सुने फिल्म पाकीज़ा में से अगला गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

0: देश भर में सुनाई देता है फिया दे बे प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हक द बेस्ट उजाला रेडियो
1: तुझे लगे ना नजरिया
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

उजाला रेडियो का प्रोग्राम सबरंग आप सुन रहे हैं। प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तेरे बिन, कभी बात करने की हसरत और कभी देखने की तमन्ना, तुम बिन मन की बात अधूरी, दिन है अधूरे, रात अधूरी।

फिल्म मृत्यु दंत का नगमा पेश था महान शायर जावेद अख्तर का कलाम था मौसिकी आनंद मिलेन की। आवाजें थी कुमार सानू और साधना सरगम की। समय तो धीरे धीरे चल मिलकर सुनाएंगे आशा भोसले और किशोर कुमार।

समय तो धीरे धीरे चल, अमर गीत आपने अभी सुना। संगीत से सवारे थे राहुल देव बर्मन और गीत रचना राज कवि तुलसी का। कौन कहता है कि मोहब्बत आंखों में होती है, दिल तो वो भी ले जाते हैं, दिल तो वो भी ले जाते हैं जो नजरें झुका कर चलते हैं।

शोखियाँ नजर में है, शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा। लक्ष्मीकंद प्यारेलाल की मौसिकी और आनंद बख्शी का कलाम था। अकेले जीने की आदत तो पहले से थी, लेकिन न जाने क्यों आजकल तन्हाई महसूस हो रही है।

राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत में पेश था ये नगमा बोल था आनंद बख्शी का। मैं जिस दिन देख लूं तुमको मुझे महसूस होता है कि ये दुनिया कितना खूबसूरत है। तुम जो हमारे मीत न होते, गीत ये मेरे गीत न होते।

फिल्म आशिक में से ये गीत पेश था। संगीतकार शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे और शायर शैलेंद्र का गीत रचना था। रोमानी अंदाज में आइए सुने लता मंगेशकर से ये खूबसूरत नगमा।

चंद प्यार मेरा खूबसूरत अंदाज में पेश था ये नगमा महान शायर राजेंद्र कृष्ण का लिखा तर्ज और संगीत से सवारित है से रामचंद्र। इसी रोमानी अंदाज में अगला नगमा पेश है आशा भोसले की आवाज़ में।

फिल्म उमंग का नगमा आपने अभी आशा भोसले से सुना। गीतकार अनजान का तर्ज, संगीत देने वाले थे शंकर जयकिशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सुनने वाले ये प्रोग्राम से लुत्फ उठा रहे हैं। अब आइए सुने तलत महमूद से ये नगमा।

वहां नगमा पेश था तलत महमूद की आवाज में। अब आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहिब से ये दो गाना।

फिल्म पारस मनी से ये दो गाना लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कलाम था असद भोपाली का, संगीत देने वाले थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अब आइए सुने मुकेश से अगला गीत।

और इसी गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। नमस्कार। खादिमा थी निशा।

जी के साथ गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सनिचर को 87 साल की आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार औत पत्नी श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला बॉयक भोला श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजिन धनीराम सिंह सन्दर फान जेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था धनीराम सिंह संजय फान जेल्दरन जोशुआ लाजारोफ और सेल्फाना लाजारोफ के नाना। अम्स्टरडम ज़ोइटोस मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम ज़ोइटोस में। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अम्स्टरडम से समस्त परिवार कान्हाई बहुत दुख के साथ, ये होना चाहिए समस्त परिवार भोला बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए सनिचर को 87 साल के आयु में ज़ीफ़नन तख्त ख़ियार औत श्रीमती कमला भोला कन्हाई का पति लड़कन शारदा धनीराम सिंह भोला बॉयक भोला श्यामा भोला और माला भोला के पिता पतो सहायरा भोला भत्तू और तीन दामाद रजेन धनीराम सिंह सांदर फंजेल्दरन और रिस्टो लाजारोफ के ससुर सिद्धार्था धनीराम सिंह संजय फंजेल्दरन जोशुआ लाजारोफ और सेल्फाना लाजारोफ के नाना। अम्स्टरडम ज़ोइटोस्ट मेयरहॉफ का रहने वाला श्रीमान लेखराम भोला के मृत्यु अम्स्टरडम ज़ोइटोस्ट में हो गई है। पारामारिबो में पहले कॉर्नेलिया स्ट्रात का रहने वाला था। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले शुक्रवार के रात में 6:30 to 7:30 बजे तक। फ्रेडाखाफंत फन हालफ ज़ीफ़न तो थालफ़ाख्त उइटवार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्ड के मुर्दालय ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्फ में। और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले शनिचर के दिन में 3 बजे ज़ात्रदखांस्तांद 3 यूर किए जाएंगे। वेस्खार्ड क्रीमाटोरियम ओकमेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-21-15-61-28 सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समझ परिवार भोला के दुख में शामिल।

नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो थोड़ा इंतजार। एश किंग एंड जोनिता गांधी, इन दोनों से आप गीत को सुने। और ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा उजाला.nl।

उजा रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो तुझे

0: live vanuit de hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवराजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, शूट योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवराजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en aap sun rahe hain Ujala Radio.
3: फिल्म वारदात से सुर का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और उषा मंगेशकर की आवाज में मैं हूं शहीद गुलजार नमस्कार अस्सलाम वालेकुम कुछ देर के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं लेकर कुछ मिले जुले संगीत और ऐसे में हो जाए सारा जहां छोड़ के तुझे मैंने सलाम किया है अरे जालिम तूने भी किया ऐसा कोई काम किया है

सच्चे के तूने भी किया ऐसा कोई काम किया है। सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब और उषा मंगेशकर की आवाज। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो। तो जाने है तो मिले जुले संगीत में हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। और ऐसे में ये हो जाए ये जो हल्का हल्का जरूर है रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते एम सी में आप डायल कर सकते हैं 02-409-0807 पर। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में नेहा कक्कड़ की आवाज़।

वाह किया लिरिक्स है, ये जो हल्का हल्का जरूर है मैंने खुद तुझ पे लुटा दिया। यू आर के जरिए और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले हैं और ऐसे में हो जाए किशोर दा की आवाज़ सामने, ये कौन आया मैं तो नहीं हूँ।

सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं और इस संगीत की दुनिया में सुरीली माहौल में आइए मिलकर सुनते हैं एक रोमानी नगमा। बेशक नामक फिल्म से सन 1981 का फिल्म बेशक से आइए मिलकर सुनते हैं प्रीतम तुम मेरी रहोगी सदा ये वादा करो।

सन 1981 का फिल्म फिल्म साहस से आइए मिलकर सुनते हैं द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज़ में। सारे जमाने में बस एक दीवाना तो और एक हसीना हूँ मैं। हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है स्टूडियो से। आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। इट्स यू आर उजाला रेडियो, तू जाने है तो।

0: मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया आशा जी की आवाज में सारे जमाने में बस एक दीवाना तू और एक हसीना हूं मैं।
1: उजाला रेडियो, रेडियो तू जाने है तोह तोह।

फिल्म का नाम प्यार किए जा, सन 1966 का फिल्म, 1966 का फिल्म प्यार किए जा। दिल हमने दे दिया, क्या तुमने भी दिल दे दिया? दिल हमने दे दिया। फिल्म का नाम प्यार किए जा। स्टेशन है यू आर

मजेदार संरक्षण आपकी खिदमत में अर्ज की गई है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। मिक्स मैक्स सॉन्ग्स में यू आर के जरिए हम आपको और भी अच्छे अच्छे सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। नींद चुरा के रातों में, अब रात की नींद चुरा लिए तक रात भर का करिए। मजा आप लुटे ही रहना उजाला रेडियो से।

0: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।
1: हाय हाय क्या बात, सुनिधि चौहान की आवाज, फिल्म का नाम फन्ने खान, जवां है मोहब्बत।

0: Music. Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
1: You are. You are.
2: The most sensational and
3: the best.
0: रोमांटिक मूड में आइए अब सुनते हैं वेरी रोमांटिक सॉन्ग सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज. फिल्म का नाम स्वयंवर. मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें.

दिस कुकिंग बपिरहरी, डिस्को बादशाह फिल्म का नाम साहस, सन 1981 का फिल्म 1981।

डिस्को किंग बपी लहरी के आवाज में आप अभी सुने हैं डिस्को बादशाह। नाचे कोई गाए कोई हमसे अच्छा। युवा उजाला रेडियो का पैगाम है, हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं आप सभी खुश रहे और सलामत रहे। प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना।

ओ तेरे पीछे भागे, नैना तो से लागे दिन रात जागे, बस तो है सोचे मन बावरा, सोचे न आगे नैना तो से लागे। राहत फतेह अली खां की आवाज़।

यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुनते रहे ना और सुनते ही जाना। एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन, सन 1988 का फिल्म 1988 का फिल्म मुलजिम से ताई ताई। मेरे ख्याल से ये सलमा आगा की आवाज में है। ताई ताई, बाय बाय, हम आपसे फिर मिलते हैं। मैं हूँ शहीद गुलजार, सुनते रहना और सुनते ही जाना।

के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तू यार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड जोंदग 30 अगस्त जिया इवेंट सेंटर डेन हाग में। Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

अगर आपके घर पे जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

तू सो जाए मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो। क्या बात है, धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं। सुनने वालों, इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर www.ujala.nl। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए भी टाड़ आप कर सकते हैं दफ्तर के समय तहदिन कांतोर उरन 020 409 080।

उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी। मारो नाम श्रेष्ठ करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया। लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
1: बोल दूं बापू?
0: बोल दे बेटा।
1: बाप

0: बापू।
1: अरे की है बरखुरदार,
0: कहना तो नहीं चाहिए लेकिन क्या करूं हूं लाचार।
2: की है बोल भी।
0: ओ खेतों के उस पार, ओ खेतों के उस पार रहती है गोरी गोरी गरीब किसान की छोरी। मुझे है इससे प्यार बापू, मुझे है इससे प्यार।
2: हाय
1: की कहे की कहे, प्यार की होए आए प्यार की होए, हम तो एक ही बात जाने।
3: बोल दो बापू।
1: बोल दे बेटा।

0: ठीक है बापू मैं जाता हूँ, आप तो जाने मैं बेकसूर हूँ लेकिन मजबूर हूँ।
1: अरे कठे जाए मेरी बात भी तो सुने।
0: तेरी खातिर देखी है एक राजकुमारी, है एक राजकुमारी, जा घोड़ा ले आ।

0: लूंगो, लेकिन बदले में राजा से एक एक के हजार लूंगो।
1: क्या शादी भी है व्यापार?
0: हाँ बेटा, एक एक के बड़े हजार, ये कल मुही को सोड़, तू प्यार से मुंह मोड़, अरे पैसे से नाता जोड़।
1: ठीक है बापू, मानता हूँ मैं आपकी बात, लाइए वो जेवरात, ले ले बढ़ा दो हाथ।
0: ए घोड़ा लाओ घोड़ा।

उजाला रेडियो पर आप गीत को सुने, फिल्म का नाम दिल क्या करे। अगला गीत जो प्रोग्राम में होंगे सुनने वालों, पेश है आदिनाथ मंगेशकर एंड ज्योत्सना हर्दिकर, इन लोगों की आवाजों में। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला.nl आप जरूर देखें।

ले और जीने को मुझे क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत फिर से सजाए और गाए गए उजाला रेडियो पर आप सुने।

तुम मिले तो दिल खिले, तुम मिले दिल खिले, मुझे जीने को और क्या चाहिए। फिल्म क्रिमिनल का गीत और गीत के गाने वाले कुमार सानू एंड अलका जी, उजाला रेडियो पर।

मैंने सोचा ना था एक दिन आप हमको यूं मिल जाएंगे और राहों में फूल खिल जाएंगे। मैंने सोचा ना था। यस बॉस, फिल्म का नाम कुमार सानू एंड अलका जी, इन दोनों से आप सुने।

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

ये उजाला रेडियो है, सुनने वालों इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम दर्द दे दियो, दर्द भरी गीतों के साथ, उन गीतों के साथ जो कि सुन करके कभी दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, कैसा भी हो, प्रोग्राम आप ही के लिए हम बना रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सुनेंगे और भी पसंद करेंगे।

जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। एल्बम बेवफा सनम, गाने वाले अनुराधा पौडवाल और सुरेश वडकर से गीत को आप सुने, पहला गीत आज का प्रोग्राम दर्द दिल में। और अब हिस्सा लेंगे मुकेश जी।

वफा जिनसे की बेवफा हो गई है। मुकेश जी की आवाज फिल्म प्यार का सागर 1961 नैखंतिन एन जस्तक के फिल्म रवि म्यूजिक डायरेक्टर और इस फिल्म में काम किए मीना कुमारी के साथ राजेंद्र कुमार।

बिछड़े हुए परदेसी लता जी की आवाज में आप सुने 1949 निखन फिर तक की फिल्म बरसात का गीत, शंकर और जय किशन संगीत से सजाए, और इस फिल्म में काम किए उन दिनों राज कपूर के साथ नरगिस जी। उजाला रेडियो है ये, प्रोग्राम का नाम दर्द दिल।

जाने कैसे बीतेगी ये बरसाते। गीत आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में। 1981-1989 के फिल्म बसेरा से निकाला हुआ राहुल देव बर्मन संगीत से सजाए, और इस फिल्म में काम किए शशि कपूर के साथ राखी, रेखा और पूनम ढिल्लन।

मुझको दिया अंधेरा। मुकेश जी की आवाज 1976 1976 के फिल्म संतान का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार थे और इस फिल्म में काम किए जितेंद्रा के साथ रेखा एंड अशोक कुमार जी।

शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता जी की आवाज में आप गीत को सुने। 1980 की फिल्म आशा से निकाला हुआ गीत लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल संगीत से सजाइए। और इस फिल्म में उन दिनों काम किए जितेंद्रा और रीना रॉय। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम है दर्द दिल।

बेवफाई, कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति से गीत को आप सुने 1992 की फिल्म माशूक से, और काम की इस फिल्म में अयूब खान के साथ आयेशा झोलका। उजाला रेडियो है ये, मोहम्मद रफी साहब हिस्सा ले रहा है।

तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम हम आज की बाद। मोहम्मद रफी साहब की आवाज और फिल्म हवस के गीत आप सुने। 1974 की फिल्म नेहंतिन फिरन से फंतख की फिल्म हवस और संगीत से सजाए उषा खन्ना और काम किए उन दिनों इस फिल्म में अनिल धवन के साथ नीतू सिंह, बिंदु, विनोद मेहरा और विद्या सिन्हा। उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल है ये।

लंबी जुदाई, रेशमा की आवाज। फिल्म हेड़ो का गीत आप सुने उजाला रेडियो का प्रोग्राम दर्द दिल में। और अब इस प्रोग्राम में एक आखिरी गीत आप सुनेंगे और ये होंगे किशोर कुमार जी की आवाज में।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाँ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद लें ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर एक कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए। उजाला इस वन हेल नीलम, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।

0: छूटे ना
1: छूटे ना
0: हाँ कर ले तो कर ले
1: चाहे मारो चाहे या पापा
0: चाहे सर फूटे।

जाना रेडियो, वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन। वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है। चेक फॉर मेयर इन्फॉर्मेटिव उजाला बिंदनाओ, उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में, काबल के जरिए, ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो दे अबे प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर। जहाँ पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए, उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है। काम में लाए उजाला रेडियो, उजाला रेडियो आपके साथ।